0: गावन जति सती संतोखी गावै वीर करारे
1: गावन पंडित पंडर की सर जुग जुग वेदा नाले
0: गावै मोनिया मन मोहन सुरगा मच प्याले
1: गावन रतनो पाए तेरे अठसठ तीर्थ नाले
0: गावै जोध महाबल सूरा गावै खाने चारे
1: गावै खंड मंडल।

0: संगी परमाथे नमो पान पाने नमो मान माने
1: नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने
0: नमो नृत नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे
1: अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे प्रपंगी परमाथे समस्ती बबूते
0: कलंकंग बनाने ने कलंकी स्वरूपे नमो राज रुजेश्वरंग परम रूपे
1: नमो जोग जुगेश्वरंग परम सिद्धे नमो राज रुजेश्वरंग परम वृद्धे
0: नमो शास्त्र पाणे नमो आतुर बाणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता
1: अपेखी अपरमी अपोगी अपोक्ते नमो जोग जुगेश्वरंग परम जुगते
0: नमो नित नारायण क्रूर कर्मे नमो प्रे

0: तंत्र तंत्रंग
1: सदा सच दा नंद सर्वंग प्रणासी अनुपे अरूपे समवसन निवासी
0: सदा सिद्धा बुद्धा वृद करता अदो उर्धर धंग गंग ओग हरता
1: परम परम परमेश्वरंग प्रोष पालंग सदा सर्वदा सदाता दयालंग
0: अशेदीय पेदीय नामंग काम समस्तो पराजी समस्त अष्टामंग तेरा जोर चाचरी छंद
1: जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं
0: प्रभु हैं जू हैं देश हैं
1: अबादे आनंद स्वरूप नव सर माने समस्त नजाने
0: नव स्वंग नाथे नव स्वंग प्रमाथे नव स्वंग गंजे नव स्वंग पंजे
1: नव स्वंग अकाले नव स्वंग अपाले नमो सर्व देशे नमो सर पीछे
0: नमो राज राजे नमो साज साजे नमो शाह शाहे नमो महा माहे
1: नमो गीत गीते नमो प्रीत पीते नमो रोख रोखे नमो सुख सुखे
0: नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग
1: नमो सर्व ज्ञानंग नमो परमतानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग
0: नमो सर्व दृश्यंग नमो सर्व कृष्ण नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे
1: नमो जीव जीविंग नमो बीज बीजे अखिजे बीजे समस्तंग प्रसिजे
0: कृपालंग स्वरूपे को कर्मंग पंडासी सदा सर्वदा हृदय सदंग निवासी चरपट संत वैपर साध
1: अमृत कर्मे अमृत अर्मे खाल जोगे जल भोगे
0: अचल राजे अटल साजे अखल तरमंग लख करमंग
1: सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग भाने सर्वंग माने
0: सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता
1: सर्वंग देवें सर्वे पेवें सर्वंग काले सर्वंग पाले
0: रुआल संत व प्रसाद
1: आदि रूपन आदि मूर्त जून परख अपार
0: सर्व मान तिरमान देव पेव आदि उदार
1: हर पालक सब कालक सब को पन काल
0: तत्र विराजे अवधूत रूप रसाल नाम

0: चतुर चक्र कर्ता चतुर चक्र हरता चतुर चक्र जाने चतुर चक्र दाने
1: चतुर चक्र वर्ती चतुर चक्र पाती चतुर चक्र पाले चतुर चक्र काले
0: चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे चतुर चक्र माने चतुर चक्र दाने
1: चाचरी छंद
0: ना सतरे ना मित्रे ना परमंग ना पितरे
1: ना कर्मंग ना गाये या जन्मंग जाए
0: ना चित्रे ना मित्रे परे हैं पवित्रे
1: पर दिशे अदिशे अदिशे अखरिशे भगवती शंतवा प्रसाद करते
0: के आश्रय देचे के आप इस पेचे के आ गंज कर्म के आ पांच परमे
1: के आप इच लोके के आदित्य सुके के अवधूत भरने के वूत करने
0: के राज प्रमा के धर्म सदा के आशोक वरने के सर्व अवरने
1: के जगदंग कृति है के शत्रंग क्षत्री है के ब्रह्म स्वरूप है के अनुपा अनुपै
0: आदि देव्या के आप अभिव्य चतुर्भिन्न के एक

0: तन सुनत है अजात है आजाद है
1: चरपट शब्द व प्रसाद
0: सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता
1: सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग
0: सर्वंग कर्मे सर्वे सर्वे सर्वंग जुगता सर्वंग मुक्ता
1: सावल शांत व प्रसाद
0: नमो नाक नाथ सदैव प्रकाशे नंगे रूपे भंगे
1: भूते परमाथंग परमाथे सदा सर्व साथे अगाध स्वरूपे निर्वाद बभूते
0: अनंगी आमे तुरभंगी तुरकामे नरभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे
1: न पोत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तत न मत न जत न पत
0: सागंग शरीका मितो मीका सदैव प्रभा अजय।

0: परमेश्वर है, कल कारण है, सर्व कारण है,
1: तृत के तरण है, जग के करण है, मन माने हैं, जग जाने हैं,
0: सर्वंग पर है, सर्वंकर है, सर्वपास्य है, सर्वनाश्य है,
1: करुणाकर है, संबर है, सर्वे सर्वे जगदेश्वर है,
0: ब्रह्मंडस है, कल खंडस है, परते पर है, करुणाकर है,
1: जपा जप है, तपा तप है, अकीर्ता कीर्ता अमृत है, अमृत है।

0: नमस्वर प्रणामे समस्वर प्रणासे अगंजल नामे समस्वर निवासे
1: निर्कामंग भूते समस्वर स्वरूपे को कर्मंग प्रणासी स्वधर्मंग भूते
0: सदा सच दानंद सतरंग प्रणासी करी मन कुनिंदा समस्वर निवासी
1: अजाय।

0: जवन काल सब जगत बनाओ, देव दैत जशन पजाओ।
1: आदंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा।
0: नमस्कार तिसी को हमारी, सकल प्रजाज ने आप सवारी।
1: सिवकन को सिव गुण सुख दियो, सतरन को पलमो बद कियो।
0: कट कट के अंतर की

0: राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया
1: सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया
0: राग रतन परवार परिया शब्द गावन आईया
1: शब्दोत गावो हरी केरा मन जनी वसाया
0: कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया
1: ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले
0: हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना
1: अंगीकार हो करे तेरा कार्ज सब
0: सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे
1: कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले
0: साचे साहिबा क्या नाही कर तेरे करता
1: तेरे सब किस है जिस दे

अंध कहो नानक मिन हर भजन परत ताहे जम फंद जौ सुख कौ चाहें सदा शरण राम की लेह कहो नानक सुन री मना दुर्लभ मानुख देह माया कारण ताबही मूर्ख लोग अजान कहो नानक मिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान जो प्राणी निस दिन भजै रूप राम तिह जान हर जन हर अंतर नहीं नानक साची मान मन माया मैं फद रहियो बिसरियो गोबिंद नाम कहो नानक बिन हर भजन जीवन कौने काम प्राणी राम ना चेताई मद माया कै अंध कहो नानक हर भजन बिन परत ताहे जम फंद जौ सुख मैं बहु संगी पई दुख मैं संग ना कोई कहो नानक हर भज मना अंत सहाई होए जन्म जन्म भरमत फिरियो मिट्यो न जम को त्रास कहो नानक हर भज मना निरभय पावहि बास

बाल जवानी अर बिरद फोन तीन अवस्था जान कहो नानक हर पाजन बैनऊ बिरथा सब ही मान करण हो तो सो ना कियो परयो लोभ कै फंद नानक समय रम गयो अब क्यों रोब ते अंध मन माया मैं रम रहयो निकसत नाह न मीत नानक मूरत चितर ज्यों छाड़त नाह न पीत नर चाहत कछ और की और पई चितवत रहयो ठगौर नानक फासी गल परी जतन बहुत सुख के किए दुख को कियो न कोए कहो नानक सुन रे मना हर पावै सो होए जागत भिखारी फिरत है सब को दाता राम कहो नानक मन सिमरत हे पूर्ण हो वह काम झूठ मान कहाँ करै जग सुपने ज्यों जान इन मैं कछ तेरो नहीं नानक कहो बखान गर्भ करत है देह को बिन सैशन मैं मीत जिह प्राणी हर जस कहो नानक तेह जग जीत जिह कट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान तेह नर हर अंतर नहीं नानक साची मान एक भगत भगवान जिह प्राणी कह नाहे मान जैसे सुकर समान नानक मानो ताहे तन स्वामी को गृह ज्यों सदा स्वान तजत नहीं नित नानक एह बिदहर भजौ एक मन होए एक चित तीर्थ बरत अरदान कर मन में धरै गुमान नानक निह फल जात तिही।

प्रभु की अकथ कहानी जन बोल अमृत बाणी नानक दास बखाणी गुरपुरे ते जानी। प्रभु की अकथ कहानी जन बोल अमृत बाणी नानक दास बखाणी गुरपुरे ते जानी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। को अंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंग गुर प्रसाद जाप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच न हो वई जे सोची लख वार चुपै चुप न हो वई जे लाए राह लिब तार भुखियां भुख न उतरी जे बन्ना पुरियां भारू सह स्याणपा लख होई ता इक न चलै नाल किव सचियारा होई है किव कूड़ै तुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहिया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है एक ना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा पवाई है हुक्म है अंदर साब को बाहर हुक्म ना कोए नानक हुक्म है जी बुझै ता होमै कह न कोई गावै को तान होवै किसै तान गावै को दात जाने निशान गावै को गुण वडियाइया चार गावै को विद्या विखम विचार गावै को साज करे तन खे गावै को जी लै फिर दे गावै को जापै दिसै दूर गावै को विख आदरा हदूर कथना कथी नावै तोट कथ कथ कथी कोटी कोट कोट देंदा दे लेंदी थक पाए जुगा जुगंतर खाई खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राहु नानक भिक्षै वे प्रवाहु साचा साहिब साच नाए भाख्या पाऊ अपार आखै मंगै देह देह दात करे दातार फेर के अगै रखिए जित दिसै दरबार महो के बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार अमृत वेला सच नाउ वडियाई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक ए वह जानिए सब आपे सचियार थापिया न जाए कीता न होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेविया तिन पाया मां नानक गावीए गुणी निधान गावीए सुनिए मन रखिए भाउ दुख पर हर सो कर लै जाए गुरमुख नादम गुरमुख वेदम गुरमुख रहिया समाई गुर ईश्वर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हऊ जाना खाना ही कहना कथन न जाई गुरा एक देह बुझाई सब।

सेव करी इन्हीं की पावत, आन की सेव सुहात ना जी को, आगे फले इन्हीं को दियो, जग में जस और दियो सब फीको। सेव करी इन्हीं की पावत, आन की सेव सुहात न जी को, दान दियो इन्हीं को पलो, और आन को दान न लागत नीको, आगे फले इन्हीं को दियो, जग में जस और दियो सब फीको। मोग्रह में मन ते तन ते सिर लाओ।